0: ये प्रीतम का घर है श्रोताओ।
1: जाने वाले की याद
0: नमस्कार, अलविदा, कल तक के लिए विदा।

0: Broadcasting to the South Asian community of the GTA. This is Sina Radio. Sina Radio, 1650. और अब पेश है दुनिया भर के अहम अखबारों की सुर्खियां न्यूज़पेपर हेडलाइंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
1: सीना रेडियो समाचार के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। देश दुनिया के कुछ चुनिंदा अखबारों की अहम हेडलाइंस पर एक नजर के साथ हम फिर हाजिर हैं अभिवादन खुर्शीद अकरम की ओर से। तो चलिए शुरुआत भारतीय समाचार पत्रों से करते हैं और पहला अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसने अपनी एक फ्रंट पेज स्टोरी की हेडलाइन बनाई है, चाइना कन्फर्म्स शी जिनपिंग इंडिया विजिट फॉर ब्रिक्स समिट फर्स्ट ट्रिप इन सेवन ईयर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि चाइना ने कंफर्म किया है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए इस वीकेंड पर इंडिया जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट की बीते 7 साल में ये पहली भारत यात्रा होगी। उधर नवभारत टाइम्स इसी विषय पर लिखता है, दिल्ली आ रहे हैं जिनपिंग, क्या ग्लोबल समीकरण बदलेंगे, भारत और चीन और आगे सवालिया निशान है। अखबार लिखता है कूटनीतिक मामलों के जानकार कमर आगा का मानना है कि शी जिनपिंग का भारत आना बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के पिछले साल चीन दौरे के बाद ये दौरा बताता है कि दोनों देश गलवान से आगे बढ़ चुके हैं। अखबार लिखता है कि सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि जिनपिंग का दौरा 7 साल बाद हो रहा है या

0: जिनपिंग 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए जी समिट में नहीं आए थे और अब आ रहे हैं, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन पहली बार वैचारिक तौर पर एक दूसरे की ताकत को पहचानते हुए रिश्तों को सुधारने पर ध्यान दे रहे हैं। कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा के अनुसार शी जिनपिंग का भारत आना ये साबित करता है कि दोनों देश एक दूसरे को गंभीरता से ले रहे हैं। उधर दैनिक जागरण की एक हेडलाइन है, कर्नाटक में वंदे मातरम के दो पैरा ही गाए जाएंगे, डीके सरकार का फरमान हुआ जारी। बेंगलुरु से दैनिक जागरण लिखता है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों और आधिकारिक समारोहों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी करते हुए ये भी कहा है कि राजकीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए जाएंगे। उधर पंजाब से दैनिक जागरण की एक हेडलाइन है, पंजाब के उद्योगों को शारजा से जोड़ने की तैयारी, मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया प्लान, 3000 इकाइयों को होगा फायदा। दैनिक जागरण के संवाददाता रोहित कुमार लिखते हैं कि पंजाब सरकार शारजा के 3000 से अधिक उद्योगों से राज्य की कंपनियों को जोड़ने की तैयारी कर रही है। संयुक्त उद्यम, निर्यात, तकनीकी सहयोग और बाजार पहुँच बढ़ाने पर इसके द्वारा जोर दिया जाएगा। उधर गुजरात से दैनिक भास्कर की एक हेडलाइन है, गुजरात में 635 करोड़ रुपए का घोटाला, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया पे ऐप करीब 15 लाख लोगों से ठगी। दैनिक भास्कर लिखता है कि गुजरात के अमरेली साइबर क्राइम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चल रहे करोड़ों रुपए के निवेश घोटाले का भंडाफोड़ किया गया। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच टीम ने बताया है कि आरोपियों ने एसडी पे और अपना पे नाम के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए देश भर में 15 लाख से 25 लाख लोगों को निशाना बनाया। अखबार लिखता है, इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए डेली कैशबैक और 30% रेफरल बोनस का लालच देकर लोगों को फंसाया गया। अधिकारियों द्वारा की गई वित्तीय जांच में लगभग 634 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। और अब पाकिस्तान के रोजनामे जंग पर एक नजर, जिसकी एक हेडलाइन मुलाहिजा हो, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट्स पर अमल दरामद तेज करने का फैसला। इस्लामाबाद से जंग लिखता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद तेज करने का फैसला किया गया है। जराए के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब दीगर पीटीआई रहनुमाओं के पहले से जारी वारंट पर अमल दरामद तेज करने का फैसला हुआ। जराए ने बताया कि पीटीआई के मतलूब रहनुमाओं की फहरिस्त में जुनैद अकबर, अब्दुल गनी, शिबली फराज, मुराद सईद, जरताज गुल, आमिर मसूद मुगल, डॉक्टर अमजद अली, मीना खान आफरीदी, अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर बट के नाम शामिल हैं। उधर एआरवाई न्यूज की एक हेडलाइन है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन का तहलका खेज इंटरव्यू। इस्लामाबाद से एआरवाई न्यूज लिखता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन ने तस्दीक की है कि बानी पीटीआई से आला तरीन सतह पर बातचीत हो रही है और इमरान खान इसी साल जेल से बाहर आ जाएंगे। एआरवाई न्यूज लिखता है कि असलम घुम्मन ने तस्दीक की कि बानी पीटीआई की रिहाई और सियासी ब्रेक थ्रू के लिए आला तरीन सतह पर बातचीत हो रही है। उन्होंने बताया कि मुजाकरात करने वाले कुछ लोगों से उनकी बात हुई, ताहम मुजाकरात में शामिल अफराद के नाम अमानत हैं, इसलिए वो बताना नहीं चाहते। उधर बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने बताया है कि तारिक रहमान सरकार ने लूटे गए फायर आर्म्स की रिकवरी की कोशिशें तेज कर दी हैं। और यहां जीटीए के अखबार टोरंटो स्टार ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कनाडा में $1 ट्रिलियन के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए टोरंटो में अगले हफ्ते एक इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया है। उधर ग्लोब एंड मेल ने बताया है कि कनाडा यूएस ट्रेड वॉर के जारी रहने के बावजूद साउथ ऑफ द बॉर्डर की तरफ कैनेडियन बिजनेस ट्रेवल का सिलसिला अब भी जोर शोर से जारी है। उधर द वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मिड टर्म इलेक्शंस में अगर रिपब्लिकन पार्टी जीत जाएगी तो वो हर अमेरिकन वोटर को $5,000 पे करेंगे। और इसी के साथ सीना रेडियो समाचार का ये विशेष अंक समाप्त हुआ।
1: Newspaper headlines from around the world was brought to you by Sina Radio 1650 on your AM dial.

0: सेल पे आओ।
1: डिजाइनर फ्रेम ब्रांडेड सनग्लासेस की वाइड वैरायटी के लिए GTA का नंबर वन कांदा ऑप्टिकल सर्विंग यू फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांदा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।

सीना रेडियो 1650 पर सुनने वाले सभी श्रोताओं को निहिर जोशी का प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सलाम। सीना रेडियो पर सुरीली गीतमाला का ये सुहाना सफर शुरू हो चुका है। हम और आप फिर जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ। इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म जंजीर से आज का ये पहला नकमा। दीवाने हैं दीवाने को। सुनते रहिए सीना रेडियो 1650।

0: पिछले 18 सालों में जीजीओ क्रेडिट की मदद से 20,000 से ज्यादा फैमिलीज ने बिना बैंकरप्सी के अपने कर्जों से छुटकारा पाया है, चाहे बिजनेस के कर्जे हो या पर्सनल या सीआरए के टैक्सेस। मेक वन स्मॉल मंथली पेमेंट फॉर ऑल योर डेट्स।
1: कॉल रेखा ओबेरॉय एट 416-650-5800, 416-650-5800 या विजिट gtacredit.com।
2: सीना रेडियो सारा दिन सारी रात आपके साथ।
3: मोहन सहगल की डायरेक्ट और प्रोड्यूस की गई फिल्म सावन भादो में लीड रोल में नजर आए थे नवीन निश्चल और रेखा। दोनों की ये पहली डेब्यू फिल्म थी। आप सुनिए ये बेहतरीन गीत, कान में झुमका चाल में ठुमका।
4: कान में झुमका जाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा, पुर्जा लगे 85 झटके। हो तेरा रंग

कहूँ मैं खरे खरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बसा दूँ मैं। पास अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए, दिल क्यों धड़कता है तुझको दिखा दूँ मैं। तीर पे तीर चला के मुस्का के शर्मा के मुझे पास बुला ले, वहीं पे मेले लग जाए तू देखे जहाँ पलक के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग।

0: से चटका हो तेरा
1: रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला
0: हाय हाय
2: Listen to Sina Radio at work or at home, online at cinaradio.com. Sina Radio, anywhere, anytime.
3: ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे की अनोखी प्रेम कहानी पर आधारित थी फिल्म प्रेम रोग, जिसे ऋषि कपूर के पिता राज कपूर ने डायरेक्ट किया था. 1982 में रिलीज हुई ये फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरे की पहली सुपरहिट फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें 1983 में बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था. अब इसी फिल्म से सुनिए ये गीत, मैं हूँ प्रेम रोगी. सुनते रहिए सीना रेडियो 1650 पर.

0: for efficient accounting services, call Chartered Accountant Chandrasudan.
1: Chandrasudan.
0: आपका business छोटा हो या बड़ा, Chartered Accountant Chandrasudan की सेवाओं का फायदा उठाइए.
1: Chandrasudan.
0: For business solutions you can trust and for effective tax minimization strategies, it is Chandrasudan, located in the 410 Derry Road area.
1: Call 416-804-5883. That's 416-804-5883.
2: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिना रेडियो के साथ. त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करवाइए सिना रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक. अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ. सिना रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी. एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1. दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1.
3: मैंने प्यार किया, ये फिल्म 1989 की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी. इसमें हीरो थे सलमान खान और भाग्यश्री. इन दोनों ने इस फिल्म में अपने अभिनय का जो जलवा बिखेरा था वो काबिले तारीफ था. आइए सुनते हैं इस खूबसूरत जोड़ी पर फिल्माया गया ये लाजवाब गीत, सिर्फ सीना रेडियो 1651.

मनोज कुमार ने अपने फिल्मी सफर में बॉलीवुड को उपकार, बेईमान, रोटी कपड़ा और मकान और आदमी जैसी कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें से उनकी एक बेहतरीन फिल्म कलयुग और रामायण भी शामिल है। इसी फिल्म से मैं लेकर आया हूँ ये गीत, चलो भाग चले, सिर्फ आपके लिए। जुड़े रहिए इसी तरह अपने दोस्त निहिर जोशी के साथ सीना रेडियो 1650 पर।

0: Listen to Sina Radio on your smartphone. Go to CINARadio.com and download the Sina Radio app for Apple or Android. Sina Radio, anywhere, anytime. Sina Radio.
1: दोस्तों आप हैं सीना रेडियो 1650 पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त निहिर जोशी। लीजिए एक और लाजवाब गाना बेकरार है आप सब तक पहुंचने के लिए, तो बिना देर किए सुनिए फिल्म गुड्डी का ये गीत बोले रे पपीहरा। कहीं जाइएगा मत, बस इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ सीना रेडियो 1650 पर।

हर खुशी से खूबसूरत आपकी हर शाम कर दूं, अपना प्यार और दोस्ती आपके नाम कर दूं। मिल जाए अगर दोबारा ये जिंदगी, तो हर बार ये जिंदगी आपके नाम कर दूं। जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत अल्फाज प्यार की सच्चाई बयां कर रहे हैं। प्यार की पहचान ही एक दूसरे की पहचान होती है, तो इसी प्यार के नाम सुनिए ये गीत फिल्म चरस।

0: This is Sina Radio, designed for thinking people who are proud to be South Asians. 1650 Sina Radio.
1: 1977 में रिलीज हुई मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी कहानी थी तीन बिछड़े भाइयों की, जिसमें अमर विनोद खन्ना, अकबर ऋषि कपूर और एंथोनी अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये तीनों भाई बड़े होकर दोस्त बनकर एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी अपनी जिंदगी को हंसी खुशी बिताते हैं। आप भी इसी तरह मुस्कुराते रहिए हमेशा और सुनते रहिए ये।

0: Sina Radio. More music, less talk. 1650 Sina Radio.
1: राजेश खन्ना और मुमताज ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। सबसे अच्छी बात ये थी कि इन दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी थी कि सभी डायरेक्टर्स इनको अपनी फिल्मों में हाथों हाथ लेते थे, या यूं कह सकते हैं कि इन दोनों को बॉलीवुड की सफल जोड़ियों में जाना जाता है। चलिए सुनिए इनकी ही एक फिल्म अपना देश का ये गीत सिर्फ सीना रेडियो 1650 पर।

सोचा है तुम्हें कि कुछ गुनगुनाएं, मस्ती में झूमें और जरा धूम मचाएं। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाएं, फूलों से होठों की लाली चुराएं। साहिल लुधियानवी के लिखे इस प्यार के अल्फाज को किशोर कुमार और

हसीना रेडियो, सारा दिन सारी रात आपके साथ। 1650 सीना रेडियो की ओर से अब पेश है बॉलीवुड की ताजा खबरें। सीना रेडियो समाचार की सितारों भरी महफिल में आपका दिली खैर मकदम है। बॉलीवुड न्यूज के ताजा एडिशन के साथ हम फिर हाजिर हैं दोस्तों। सामईन, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए गाने वाले यसुदास का करेंगे कुछ तज़किरा, और अदाकारा ज़ेबा ने आज देखी जिंदगी की 81वीं बहार, और तमन्ना भाटिया का 6 मैया गाना हुआ रिलीज, फैंस हुए मंत्र मुग्ध, और तलाक के 12 साल बाद विदेशी संग जेनिफर विंगेट ने बसाया फिर अपना घर। ये रुदाद भी सुनिएगा। मैं खुर्शीद अकरम आपका फिर से स्वागत है। सामईन, इंडिया या केरल के लोगों के लिए यसुदास सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं है, उनकी आवाज दशकों से सिनेमा, त्योहारों, भक्ति परंपराओं और लोगों की निजी यादों का हिस्सा रही हैं। जी हाँ सामईन, यसुदास के गाने पीढ़ियों से सुने जा रहे हैं और उनके खास अंदाज ने उनके बाद आने वाले सिंगर्स को भी प्रभावित किया है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए 1979 में रिलीज हुई फिल्म दादा का ये गाना आज भी जब कहीं बजता है तो लोगों के दिलों के तार झनझना उठते हैं। जी हाँ सामईन, इस मखमली आवाज के जादूगर जाने माने सिंगर के जे यसुदास को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने सर आंखों पर बैठाया था। केरल के कोची निवासी यसुदास पिछले कुछ बरसों से फिल्मी चमक दमक से दूर हैं और अब वो बहुत ही कम लोगों के सामने आते हैं। हालांकि हाल ही में अमेरिका के डेलस में स्टेज पर उनकी हालिया वापसी ने फैंस को उस शानदार म्यूजिकल विरासत की याद दिला दी जिसे उन्होंने 6 डेकेड से ज्यादा अरसे में बनाया है। जी हाँ सामईन, 86 साल के सिंगर

0: येसुदास ने हाल ही में टेक्सास में केरल एसोसिएशन ऑफ डैलस की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया और स्टेज पर परफॉर्म किया। जी हाँ सामईन, येसुदास सब चकाचौंध की दुनिया से दूर रहते हैं और ज्यादा समय अपने परिवार को देते हैं। जी हाँ सामईन, येसुदास इंडिया के सबसे सम्मानित मेल प्लेबैक सिंगर्स में से एक रहे हैं। उन्होंने 8 बार बेस्ट सिंगिंग का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता, साथ ही उन्हें कई दूसरे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और सामईन, पाकिस्तानी फिल्मों के गोल्डन एज की मुमताज अदाकारा, खूबसूरती में बेमिसाल और जिनकी शख्सियत भी है कमाल, वो हैं ज़ेबा बेगम, जो आज अपनी 81वीं सालगिरह मना रही हैं। जी हां सामईन, अपने वक्त की लेजेंडरी अदाकारा ज़ेबा 10 सितंबर 1945 को इंडिया के शहर अम्बाला में पैदा हुई। उन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज 1962 में फिल्म चराग जलता रहा से किया। ज़ेबा ने अपने करियर में 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी सुपरहिट फिल्मों में अरमान, हीरा और पत्थर, तौबा, बाजी, मोहब्बत, इंसान और आदमी, जब जब फूल खिले, मोहब्बत जिंदगी है और फूल मेरे गुलशन शामिल हैं। जी हां सामईन, ज़ेबा की फिल्मी जोड़ी वहीद मुराद और सैयद कमाल के साथ बेहद मकबूल हुई, जबकि उनकी असल जिंदगी की जोड़ी मोहम्मद अली के साथ जमी। ज़ेबा की पहली शादी अदाकार सुधीर के साथ 1964 में हुई थी, मगर ये शादी ज्यादा न चल सकी। अपने दूसरे हस्बैंड अदाकार मोहम्मद अली के हमराह 50 से ज्यादा फिल्मों में काम करके ज़ेबा ने एक रिकॉर्ड कायम किया। ज़ेबा को 4 निगार अवार्ड और इलियास रशीदी गोल्ड मेडल के अलावा दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया है सामेईन। और तमन्ना भाटिया का 6 मैया गाना हुआ रिलीज। कोसी भरते दिखे सिद्धार्थ मल्होत्रा, फैंस की आंखें नम, लोग हुए मंत्र मुग्ध। जी हां सामईन, तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द वन का गाना 6 मैया रिलीज हो गया है और फैंस कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाते नहीं थक रहे हैं। गाने को विशाल मिश्रा ने गाया है और इस गाने के बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं और इसकी कोरियोग्राफी चिन्नी प्रकाश ने की है। ये फिल्म 25 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है सामेईन। और तलाक के 12 साल बाद विदेशी संग बसाया घर, 41 साल की उम्र में क्या माँ बनेगी, इंडियन एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट बताया सच। जी हाँ सामेईन, अदाकारा जेनिफर विंगेट ने डिवोर्स के 12 साल बाद फिर से शादी कर अपनी खुशहाल जिंदगी शुरू की है। जी हाँ सामेईन, अदाकारा जेनिफर विंगेट ने इसी साल जुलाई में सीक्रेट वेडिंग की थी। उन्होंने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इस्माइल संग दूसरी शादी की है। तलाक के 12 साल बाद जेनिफर ने घर बसाया है। इससे पहले उनकी शादी करण सिंह ग्रोवर संग हुई थी, मगर अब फिर से मैरिड लाइफ में आकर जेनिफर विंगेट काफी खुश हैं सामेईन। जब से उनकी शादी हुई है लोग उनके मदरहुड की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन जेनिफर ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सामेईन, खुर्शीद अकरम को इसी मोड़ पर कामिल शदारी की इस खूबसूरत गजल के साथ दीजिएगा इजाजत। एक बार हो तो जाए मोहब्बत किसी के साथ, सब गम गलत हैं एक गमे आशिकी के साथ। होता है एक माल मुसर्रत निगाह में, हंसता जो देखता हूँ किसी को किसी के साथ। क्या पूछते हो मुझसे मेरे दिल की आरजू, अब मेरी हर खुशी है तुम्हारी खुशी के साथ। कामिल ये बात याद रखो, बल्कि लिख रखो, खाली कभी न जाएगी निस्बत किसी के साथ।
1: बॉलीवुड से ताजा तरीन खबरें सीना रेडियो की ओर से पेश की गई।

0: गणेश चतुर्थी पराग फूड्स लेकर आए हैं मोदक का एक शाही दरबार। शुद्ध और मलाईदार खोया मेवा मोदक, केसर की खुशबू से महकता शाही केसर मेवा मोदक, पराग फूड्स मोदक, बप्पा के पसंदीदा मोदक।
1: होलसेल प्राइस पे मिठाइयां लीजिए पराग स्वीट्स से, 27 स्ट्रेथन एवेन्यू यूनिट 8 ब्रम्पटन,
2: 9054992880।

1968 में बनी फिल्म हमसाया जॉय मुखर्जी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी, जिसमें उनके साथ दो दो खूबसूरत बलाएं माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर नजर आई थी। इस फिल्म का म्यूजिक ओपी नैयर साहब ने दिया था। सुनिए इसी फिल्म का ये गीत, आजा मेरे प्यार के सहारे।

0: Listen to Sina Radio on your smartphone. Go to cinaradio.com and download the Sina Radio app for Apple or Android. Sina Radio, anywhere, anytime. Sina Radio.
1: वहीदा रहमान और राजेश खन्ना के प्यार भरे जज्बातों से सजी फिल्म थी खामोशी, जिसमें वहीदा रहमान ने एक नर्स की भूमिका निभाई थी और इनकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों के दीवाने हो चुके थे अरुण यानी राजेश खन्ना। इसी दीवानेपन में वो अपने प्यार को कुछ इस तरह बयां कर रहे हैं। आप भी सुनिए मेरे साथ ये गीत सिर्फ सीना रेडियो 1650 पर, सारा दिन सारी रात।

0: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।
1: दोस्तों, गुलाम अली साहब की दिलकश आवाज में ये खूबसूरत गीत सुनिए। वो बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये पूरा गीत सुनिए निहिर जोशी के साथ सीना रेडियो पर।

0: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।
1: Here is another song in the melodious voice of a Canadian artist.

0: सीना रेडियो सारा दिन सारी रात आपके साथ।
1: सायरा बानू ने शम्मी कपूर के साथ पहली बार 1961 में रिलीज हुई फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर के लिए सभी गाने मोहम्मद रफी साहब ने ही गाए थे। इसी फिल्म का एक गाना ऐसा था जो आज भी लोगों की जुबां पर हर वक्त रहता है। लीजिए आप भी सुनिए फिल्म जंगली का ये गाना और बने रहिए सीना रेडियो 1650 पर।
2: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के धूमानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे,

मुझे जंगली कहे।

राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की खूबसूरत लव स्टोरी से सजी फिल्म थी महबूबा, जिसमें ये अपने अतीत में एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और पुनर्जन्म में फिर से इन दो प्रेमियों का मिलन होता है। जुदाई में विरह की दास्तां को राजेश खन्ना ने इस तरह बयां किया था, आप भी सुनिए इस गीत में, जिसके बोल हैं मेरे नैना सावन भादो।

0: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 Extension 1.
1: Here is another song in the melodious voice of a Canadian artist.

0: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।
1: सिन्हा रेडियो प्रेजेंट्स अनदर कैनेडियन आर्टिस्ट।

0: Sina Radio. More music, less talk. 1650 Sina Radio.
1: दोस्तों, समय अपनी चाल को कभी नहीं बदलता, वो बस चलता ही जाता है और हमें खबर तक नहीं होती। जी हाँ, आपसे बातें करते करते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब अपने दोस्त निहिर जोशी को दीजिए इजाजत और सुनिए फिल्म अंदाज से ये गीत। हम फिर मिलेंगे सीना रेडियो 1650 पर। तब तक के लिए सलाम।

प्रोग्राम सुनने वाले साथियों को पूनम गिलानी का नमस्कार। सामीन, रेडियो इंडिया आपसे मुखातिब है। दोस्तों, धीरे धीरे इस प्रोग्राम का नशा हम पर सवार होता जा रहा है। अब तो बस होठों पर एक ही नाम है, एक ही चर्चा है, और वो है इस प्रोग्राम की। हमारा ये पागलपन तो जायज है, क्योंकि हमें और आपको अपने इस प्रोग्राम से बेइंतहा मोहब्बत है। लेकिन ये क्या, इन आशिकों की हालत तो और नाजुक है। फिल्म का नाम ये दिल लगी, आवाज कुमार शानू और लता मंगेशकर की।

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

कैद में है बुलबुल। प्रोग्राम का अगला गीत इसी फिल्म से, स्वर अलका याग्निक का। ये फजा, ये ऋतुएं हमारे मन की भाषा को कैसे पढ़ लेती हैं? अब देखिए ना, तरह तरह के फूल खिले हैं, दिन आ गए हैं बहारों के।

0: Listen to Sina Radio at work or at home, online at cinaradio.com. Sina Radio, anywhere, anytime.
1: कभी हाँ कभी ना। हाँ दोस्तों, ये नाम है फिल्म का जिसका गीत गाया है कुमार शानू, अलका याग्निक और साथियों ने। कहा जाता है प्यार और जंग में सब जायज है, यानी कि प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी तरकीब को काम में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसी भी तरकीब ठीक नहीं जिससे महबूबा ही रूठ जाए। तब इस खता की माफी कैसे हो? लीजिए एक मंजर पेश है जिसमें रूठी हुई महबूबा को यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है कि उसे हासिल करने के लिए ही जोखिम उठाए गए हैं। गीत सुनकर ऐसा लगेगा कि इस मासूम खतावार को माफी मिलनी ही चाहिए।

रेडियो इंडिया की अगली पेशकश उदित नारायण और सुजाता गोस्वामी के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है आ गले लग जा। आशिकी में आशिक और माशूका एक दूसरे में खोए हुए उल्फत की राहों में जीवन भर हम कदम रहते हैं। दिल की हर धड़कन में अपने साथी का ही नाम होता है। वो जीवन जिसमें अपने साजन का प्यार न हो और वो मन जिसमें सजनी का चेहरा न हो, उन्हें मंजूर नहीं है।

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

आप प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा भोसले और मनमोहन सिंह के स्वर और फिल्म का नाम लावा। समाप्त फरमाइए ये नगमा। जमाने के जुल्म सितम की परवाह नहीं, यहाँ तक कि मौत का भी खौफ नहीं। इतनी ताकत आखिर आई कहाँ से? प्यार की शक्ति है शायद, जिसने दुनिया का भय मिटा दिया है दिलो दिमाग से।

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

हाँ, मेरा दिल कह रहा है मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है मैं तेरे सुर्ख लरसते होठों की लाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है तेरी पाजेब की झनकार पे, तेरे बाहों की चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गेसु सवार इन आंखों के आईने में तेरा दुल्हन सा रूप निहारो, इस महकती जमीन की सेज पे अपने अरमानों की चाहत लिख दूं, मोहब्बत लिख दूं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो इंडिया, आपके पसंदीदा सदाबहार नगमों का खजाना।
1: विपिन सचदेवा की आवाज में अब हम पेश कर रहे हैं चांद का टुकड़ा फिल्म का नगमा। रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चेहरे हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। ये तो बड़ी मामूली सी बात है, इसमें नयापन क्या है? अरे भाई, इंसानों के मेले में इंसानी चेहरे तो दिखेंगे ही, पर अचानक एक दिन हमारी नजर कहीं रुके, हम ठिठक पड़े हों तो अचरज क्यों? सामने देखा है एक ऐसा मुखड़ा जो है सचमुच चांद का टुकड़ा।

0: आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश कर रही हैं पूनम गिलानी।
1: रेडियो इंडिया की जानिब से पेश खिदमत है आयशा भोसले और दिलराज कौर की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम सत्य पे सत्ता। जवानी की रुत बड़ी ही मस्तानी होती है, इसकी चौखट पर कदम पड़ते ही मौसम बदलता हुआ मालूम होता है। जीवन के अनजाने रास्तों पर जवानी का मोड़ न जाने कौन सा अफसाना बना डाले,

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिना रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिना रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिना रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

0: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।
1: नदिया के पार। अब सुनिए इस फिल्म का गीत जसपाल सिंह के स्वर में। रिश्तों के संसार में एक बड़ा मधुर रिश्ता है देवर भाभी का। छेड़छाड़ और चुहल इसमें मिठास और अपनापन बढ़ाते हैं। परिवार में भाभी का आगमन देवर के लिए खुशियों के दरवाजे खोल देता है। देवर के लिए घर आंगन की बहार है उसकी ध्वजा। और इसके साथ ही दोस्तों हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अनु मलिक के बनाई तर्ज पर एक नगमा, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, और फिल्म का नाम है सर। कबूतरों के पंखों जैसी ये उजली चांदनी, साफ शफाफ जैसे चांद के टुकड़े खिलखिलाकर हंस दिए हों, जैसे सफेद बर्फ का दामन थामे कोई दूर चला जाता हो धीमे धीमे।

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

सातवां आसमान। इस फिल्म में सुनिए प्रीति उत्तम और घनश्याम वासवानी को। मौसिकार हैं राम लक्ष्मण। ऐसे जीता हूं जैसे शीशे के टूटे हिस्से को जोड़ता है कोई, या तरसती हुई उमंग के साथ ख्वाब में फूल तोड़ता है कोई।

0: रेडियो इंडिया का प्रोग्राम इस वक्त आपके लिए पेश कर रही हैं ऋचा शील।
1: रेडियो इंडिया की अगली पेशकश फिल्म साजन से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, मौसीकार नदीम श्रवण। ये दिल भी कितना मासूम है, इस पर बस तुम्हारा ही अख्तियार है। लाख पहरे बिछाए जाएं, ये तुम्हें को प्यार करता है।

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो इंडिया टोरंटो और आसपास के इलाकों में हिंदू पाक से आए बाशिंदों के लिए मनोरंजन और जानकारी का जखीरा।
1: मुकाबला फिल्म का गाना पेश है अनुराधा पोडवाल और सोनू निगम की मिली जुली आवाजों में। नैनो से बात करें नैन बिना बोले। जी हाँ, कभी कभी ये नैन भी आपस में बात करते हैं और वो भी बड़ी खामोशी के साथ। दो प्यार करने वालों को ऐसे ही बात करने दी जाए, खामोशी के साथ, बेकरारी के साथ, प्यार के साथ।

अनुराधा पोडवाल और आबिद खान को सुनिए, फिल्म है मैना और मौसीकी नरेश शर्मा की। चुलबुली नायिका साजन से क्या पूछ रही है, इसे आप इस नगमे में सुनिए।

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए

नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

आप सुन रहे हैं रेडियो इंडिया। टोरंटो और आसपास के इलाकों में हिंदू पाक से आए बाशिंदों के लिए मनोरंजन और जानकारी का जखीरा।

0: Listen to Sina Radio at work or at home, online at cinaradio.com. Sina Radio, anywhere, anytime.
1: रेडियो इंडिया का ये प्रोग्राम सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन, जिंदगी की राहों में कभी कभी कोई अचानक ऐसा मिल जाता है जिसे देखकर ये तड़प होती है कि उसका नाम लेकर पुकार लें। न जाने कौन सा रिश्ता वक्त के वीराने से उभर कर सामने आ जाता है। नगमा सुनी, फिल्म है फूल और कांटे, आवाजें अनुराधा और कुमार सानू की।

साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में हम आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम का अगला नगमा। फिल्म है पायल और संगीत नदीम श्रवण का। मेरी तकदीर बन गई होती, मेरी तकदीर बन गई होती।

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो इंडिया, टोरंटो और आसपास के इलाकों में हिंदू पाक से आए बाशिंदों के लिए मनोरंजन और जानकारी का जखीरा।
1: अगली पेशकश के साथ ही ऋचा शील आपसे इजाजत चाहती है। इस नगमे में सावन को मुखातिब करके कुछ बातें कही गई हैं। सावन बरस जाए तो सब कुछ हरा भरा, भीगा भीगा प्यारा लगने लगता है। मयूर पंखी सपने रक्स करने लगते हैं और मन झूम झूम कर गाने लगता है। ये है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर, फिल्म लुटेरे में।

रेडियो इंडिया की तरफ से मोहम्मद अनवर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता है। अनोखी रात फिल्म के लिए रोशन का संगीत से सजाया गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। हमने माना कि गुलजार में बागबां है बजाहिर महकते गुलों का समा, फिर भी क्यों आज दिल को ये एहसास है जैसे हर समत खारों की तंजीम है।

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिना रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिना रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिना रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो इंडिया टोरंटो और आसपास के इलाकों में हिंदू पाक से आए बाशिंदों के लिए मनोरंजन और जानकारी का जखीरा।
1: इंसान अकेले आता है, अकेले जाता है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए साथ की तलाश, जुस्तजू और जरूरत हमेशा रहती है। महेंद्र कपूर को सुनिए फिल्म हमराज में, मौसीकी रवि की है। कुछ नहीं हूं सिवा मोहब्बत के, आप इतना न मुझसे शर्माए, हम तनगोश हो ऐ दोस्त, साज दिल पे गजल सुनाए।

0: Listen to Sina Radio on your smartphone. Go to cinaradio.com and download the Sina Radio app for Apple or Android. Sina Radio, anywhere, anytime. Sina Radio.
1: आदमी बदलता है, साथें बदलती हैं, कब मगर निगाहों की चाहतें बदलती हैं। फिल्म गाइड के लिए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत। संगीत निर्देशन एसडी बर्मन का है। तुमने मोहब्बत में दिल पर कुछ इतने जख्म लगाए हैं, जीस्त मेरी है एक अफसाना दर्द भरा उनवान लिए, कुछ मायूसी कुछ नाकामी कुछ अपनी बेराह रवि, कितने गमों का बोझ है अपने दिल पर एक इंसान।

0: Listen to Sina Radio at work or at home, online at cinaradio.com. Sina Radio, anywhere, anytime.
1: जहर हो या हराम जो भी हो तेरी झूठी मिले तो पीलू मैं ऐ दिल जिंदगी बुरी ही सही तुम जो कह दो और जी लूं मैं। कहते हैं प्यार में सब जायज होता है, जी हाँ, चाहे वो मजाक की तह में हकीकत हो या हकीकत में घुला हुआ मजाक। आइए मुकेश को सुनते हैं, फिल्म का नाम है सफर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। ये किस्मतों की शिकायत मुझे पसंद नहीं, हुजूर आपकी आदत मुझे पसंद नहीं, गमों से दूर खुशी की बहार में खोजा, उदास हुस्न की हालत मुझे पसंद नहीं।

इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो इंडिया, टोरंटो और आसपास के इलाकों में हिंदू पाक से आए बाशिंदों के लिए मनोरंजन और जानकारी का जखीरा।
1: दिल में रहने वाले हमेशा दिल में रहते हैं, भले ही चाहे वक्त बदल चुका हो, चाहे मौसम निकल चुका हो। एक गीत सुनिए फिल्म खामोशी से, आवाज किशोर कुमार की और संगीत हेमंत कुमार का। आज साहिल पे सफीना आ गया, तेरी नजरों का करीना आ गया, वही रातें वही शामें साथ तेरा, मरहबा जिंदगी को जीना आ गया।

0: कोई पाबंद मोहब्बत ही बता सकता है एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है। आइए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। खैर से मेरा जुनून इश्क है अब रंग पर, अब तो दीवाने भी कह देते हैं दीवाना मुझे। एक हकीकत को जमाने से छुपाने के लिए मुस्कुरा कर वो भी कह देते हैं दीवाना मुझे।
1: बिजली गिरा के आप खुद

0: Listen to Sina Radio on your smartphone. Go to cinaradio.com and download the Sina Radio app for Apple or Android. Sina Radio, anywhere, anytime. Sina Radio.
1: दिल में तुम्हारे जो भी हो कह दो मुझसे साफ साफ, मैं तो बहुत करीब हूं, मुझसे तकल्लुफात क्या। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक गीत फिल्म दाग से। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज किशोर कुमार की। कदमों से किसके बाग तमन्ना महक उठा, दिल की हसीन राह गुजारों से पूछ लो।

0: सीना रेडियो, सारा दिन सारी रात आपके साथ। 1650 सीना रेडियो।
1: रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी जिंदगी से मिले उसे खुशी से जियो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। और आपकी जिंदगी में खुशियों को चार गुना करने के लिए मैं कंगना मेहरा हाजिर हूँ सीना रेडियो पर। सभी लिसनर्स का वेलकम है जी। तैयार हो जाइए हंसने मुस्कुराने के लिए, झूमने गुनगुनाने के लिए, ओनली ऑन सीना रेडियो। दोस्तों, आज जो सबसे पहला गाना आप सुनेंगे वो है फिल्म पड़ोसन से, जो 1968 में आई थी, स्टारिंग सुनील दत्त, सायरा बानो, महमूद, किशोर कुमार। ये महमूद प्रोडक्शंस की पहली फिल्म थी जो सुपर हिट रही। आज जो ये फिल्म देखता है ना, उसके पेट में हंसते हंसते बल ना पड़े, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। आर डी बर्मन के म्यूजिक को इसका उतना ही क्रेडिट मिलता है जितना कि एक्टर्स को। सुनिए ये मजेदार गाना पड़ोसन से, किशोरदा की आवाज में। आज के जमाने के बॉयफ्रेंड्स भी गर्लफ्रेंड्स को पटाने के लिए इस गाने का सहारा ले ही लेते हैं।

0: Listen to Sina Radio on your smartphone. Go to CINARadio.com and download the Sina Radio app for Apple or Android. Sina Radio, anywhere, anytime. Sina Radio.
1: आमिर खान जूही चावला स्टारर कयामत से कयामत तक फिल्म तो सुपरहिट थी। इस फिल्म की एड कैंपेनिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव थी। मुंबई में फिल्म के खाली पोस्टर्स लगाए गए थे जिस पर कोई फोटोग्राफ या किसी भी एक्टर की पिक्चर नहीं थी, सिर्फ ये लिखा था, हु इज आमिर खान, आस्क द गर्ल नेक्स्ट डोर। इंटरेस्टिंग ना, आमिर जूही अलका याग्निक की डेब्यू फिल्म QSQT से ये सुपर रोमांटिक ट्रैक एंजॉय कीजिए। गाने में अलका याग्निक का साथ दिया है उदित नारायण ने, संगीत है आनंद मिलन का, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के।

0: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।
1: दोस्तों, लता मंगेशकर जी हिंदुस्तानी संगीत के चाहने और सीखने वालों के लिए एक पूरी किताब है, जिसके ना जाने कितने वॉल्यूम्स हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड में फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपना वर्चस्व कायम रखा। आपको पता है, लता जी क्रिकेट की भी बहुत बड़ी फैन है, स्पेशली सचिन तेंदुलकर की। इंग्लैंड के लॉर्ड स्टेडियम में एक परमानेंट गैलरी उनके नाम से ही रिजर्व्ड है। सुनिए आवाज की मलिका का गाया हुआ यह खूबसूरत नगमा फिल्म शोर से। बोल है संतोष आनंद के, जिन्हें इस गाने के लिए फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट का नॉमिनेशन भी मिला था। म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशाय। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। डायलॉग तो पहचान ही गए है ना। 1960 के आखिरी और 1970 के शुरुआती सालों में जब राजेश खन्ना कामयाबी की चरम सीमा पर थे, तब लोगों में उनकी दीवानगी का आलम ये था कि ज्यादातर माता पिता अपने लड़कों का नाम राजेश रखते थे। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म अनुरोध से ये गाना सुनिए। सिंगर हैं उन्हीं के अजीज दोस्त किशोर कुमार, म्यूजिक कंपोजर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म में काका की को स्टार थी सिंपल कपाड़िया।

0: Listen to Sina Radio at work or at home, online at cinaradio.com. Sina Radio, anywhere, anytime.
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता टेड़े फिल्म आंखें से ये सॉन्ग कितना हिट हुआ था ना. एक्चुअली फिल्म भी बहुत अच्छी थी. दरअसल ये फिल्म कन्नड़ मूवी किट्टू पुट्टू का रीमेक थी जो इंटर्न कॉपी की गई थी विनोद मेहरा महमूद स्टारर दो फूल से. बप्पी लहरी के मस्ती भरे संगीत से सजे इस गाने का मजा लीजिए. सिंगर्स हैं कुमार सानू, सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक.

0: 1615 the GTA. This is Sina Radio. 1650 Sina
1: Radio. दोस्तों शंकर जयकिशन के संगीत से सजी मेरा नाम जोकर और संगम दो ऐसी फिल्में हैं जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक को अब तक की हिंदी फिल्मों में बेस्ट माना जाता है। वाकई में हिंदी सिनेमा के काबिल म्यूजिक डायरेक्टर्स में शुमार होता है नाम शंकर जयकिशन का। लोगों में दोनों के गानों की दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई के ईरोस थिएटर के पास एक शंकर जयकिशन चौक है। राज कपूर सायरा बानो स्टारर दीवाना में भी इसी मैजिकल डुओ ने संगीत दिया था। आइए सुनते हैं एक गाना इस फिल्म से मुकेश की आवाज में।

0: Listen to Sina Radio on your smartphone. Go to cinaradio.com and download the Sina Radio app for Apple or Android. Sina Radio, anywhere, anytime. Sina Radio.
1: बॉलीवुड क्लासिक मदर इंडिया 1957 में रिलीज हुई थी और नरगिस जी के लिए इस फिल्म के लिए हाँ कहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। करियर की शुरुआत में ही दो बच्चों की विडो मदर का किरदार निभाना उनके करियर के लिए नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर ना सिर्फ उन्होंने ऑडियंसेस का दिल जीता बल्कि वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स के लिए दरवाजे भी खोल दिए। शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले की आवाजों में मदर इंडिया से ये गाना सुना रही हूँ आपको। संगीत है नौशाद का।

0: दुख भरे दिन भी तेरे भैया भी तेरे भैया।
1: Thank you for choosing Sina Radio, 1650 on your AM dial.
2: 1650, Sina Radio.
3: नजर से नजर को मिलाओ, नजर का एतबार करो। नजर से नजर को मिलाओ, नजर का एतबार करो। हम तुम से सनम, तुम हम से प्यार करो। तुम जो रूठो तो कुछ भी करके मनाए तुमको। तुम जो रूठो तो कुछ भी करके मनाए तुमको। हम जो पल भर को जाएं तो तुम इंतजार करो। अगले गाने में साधना और संजय खान के बीच भी कुछ ऐसे ही इशारे हो रहे हैं। फिल्म का नाम है एक फूल दो माली। सिंगर है आशा भोसले, म्यूजिक दिया है रवि ने। इंजॉय कीजिए।

जब दो लोग मोहब्बत में होते हैं ना, तो एक ही आग है जो दोनों तरफ लगी होती है कि बस किसी तरह अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर लूं, अपने दिल की बात उस तक पहुंचा दूं, आंखें बंद करके अपने अंदर जो कुछ भी है सब उसके आगे उड़ेल दूं और बस सुबह शाम उसे कहती रहूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिल्म ये दिलगी से ये ट्रैक सुनेंगे तो शायद मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दिलीप सेन, समीर सेन के संगीत से सजे इस गाने में काजोल की आवाज बनी लता जी और सैफ अली खान को आवाज दी कुमार सानू ने। लिसन टू दिस सेंशुअस नंबर फ्रॉम ये दिलगी।

0: 1650 AM, Sina Radio.
1: The superstation for GTA South Asians, Sina Radio.
2: सीना रेडियो पर मैं हूं कंगना मेहरा और आपका और मेरा ये म्यूजिकल सफर जारी है। अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म हसीना मान जाएगी से। आहा आहा आहा, वो गोविंदा संजय दत्त वाली नहीं बल्कि शशि कपूर बबीता वाली जो 1968 में आई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने। सिंगर है मोहम्मद रफी, म्यूजिक कम्पोजर है कल्याण जी आनंद जी और जो गीत अभी आप सुनेंगे उसके बोल फिल्म के डायरेक्टर साहब यानी प्रकाश मेहरा ने ही लिखे थे।

प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना, वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी।

0: 1615 The GTA. This is Sina Radio. 1650 Sina Radio.
1: दोस्तों 1980 से लेकर 2000 तक सुभाष घई ने जितनी भी फिल्में बनाई सब सुपरहिट रही, सिवाय त्रिमूर्ति के जो उन्होंने नहीं बल्कि मुकुल एस आनंद ने डायरेक्ट की थी। सुभाष जी ने तो इस फिल्म को केवल प्रोड्यूस किया था। घई साहब की फिल्मों में से एक रिलीज हुई थी 1983 में, जिसके जरिए उन्होंने जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। फिल्म का नाम है हीरो और इस मूवी ने जैकी को वाकई में हीरो बना दिया था। लता जी की वॉइस में एंजॉय कीजिए दिस नंबर फ्रॉम द फिल्म हीरो। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सेना रेडियो, सारा दिन सारी रात आपके साथ। 1650 सेना रेडियो।
1: अगला गाना जो आप सुनेंगे वो है एक रोमांटिक ट्रैक फिल्म चीनी कम से, श्रेया घोषाल की मेलोडियस वॉइस में। अमित जी और तबू के लीड रोल्स वाली इस फिल्म की शूटिंग 45 दिनों में ही पूरी हो गई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर जो है यानी कि आर बाल्की साहब, वो तमिलन है और उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। शूटिंग के वक्त सेट्स पर एक ट्रांसलेटर मौजूद रहता था जो उनके डायरेक्शंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके सबको बताता था। सोचिए, तब भी शूटिंग 45 दिनों में पूरी हो गई। अगर उन्हें अच्छे से हिंदी आती तब तो शायद 15-20 दिन में ही हो जाती। सुनिए इलैया राजा के संगीत से सजा ये गाना चीनी कम से।

0: Listen to Sina Radio on your smartphone. Go to CINARadio.com and download the Sina Radio app for Apple or Android. Sina Radio, anywhere, anytime. Sina Radio.
1: पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की थी, जिनसे उनकी एक बेटी है जन्नत। बाद में मोहसिन खान से उनका डिवोर्स हो गया और जन्नत की कस्टडी पिता को मिल गई। लेकिन मोहसिन के दोबारा शादी करने के बाद रीना ने अपनी बेटी की कस्टडी ले ली और उसका नाम रखा सनम। आज भले ही रीना रॉय फिल्मों या टेलीविजन में एक्टिव नहीं है, पर अक्सर सोशल इवेंट्स में दिख जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रीना की फिल्म कालीचरण से ये गाना सुनिए लता जी की आवाज़ में। संगीतकार है कल्याण जी आनंद।

0: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।
1: कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता और जिसे मिलने वाला होता है उससे छीना नहीं जा सकता। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया फराज खान के बेटे यूसुफ खान को ऑफर की गई थी, लेकिन बीमारी के चलते वो ये फिल्म नहीं कर पाए और भाग्य चमक गया सलमान खान और भाग्यश्री का। ये बात अलग है कि भाग्यश्री का भाग्य जितना तेजी से चमका उतना तेजी से ढल भी गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये रोमांटिक ट्रैक सुनिए मैंने प्यार किया से। मूवी में संगीत दिया राम लक्ष्मण ने।

दोस्तों 4 अगस्त 1929 को जन्म हुआ था आभास कुमार गांगुली का, जिन्होंने आगे चल के हिंदुस्तानी सिनेमा के आसमान में अपनी जगह पक्की की और सितारा बन के हमेशा चमके, जिनके रास्ते पे चल के अनगिनत लोगों ने अपनी मंजिल बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वर्सटाइल टैलेंटेड एंटरटेनर किशोर कुमार की। जैसा किशोर कुमार का नेचर था ना, वो उनके सिंगिंग स्टाइल और गानों में भी झलकता था। वो एक हसमुख जॉली इंसान थे। किशोर कुमार किस प्रकार के इंसान थे, उनका नेचर कैसा था, ये आप तब ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब आप ये अगला गाना सुनेंगे, फिल्म आशा से।

दोस्तों एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ आपको, जो शायद आप नहीं जानते हो। बॉम्बे में ऐसा समय भी था जब गानों के लिए पहले लिरिक्स लिखे जाते थे और बाद में उन पर ट्यून सेट की जाती थी, लेकिन एसडी बर्मन ने इस ट्रेंड को पूरी तरह से बदल दिया था। उनकी थ्योरी थी ट्यून फर्स्ट एंड लिरिक्स लेटर, और हर सॉन्ग सीक्वेंस के लिए उनके पास ट्यून्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, जिससे डायरेक्टर्स को ज्यादा चॉइस भी मिल जाती थी। आज 10 में से 9 गाने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। मिली आखिरी फिल्म थी जिसके लिए एसडी ने म्यूजिक कंपोज किया था, उसके बाद वो कोमा में चले गए थे जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। लता मंगेशकर की आवाज में मिली से ये सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन जया भादुरी। आप है सीना रेडियो पर, मैं हूँ आपकी दोस्त कंगना मेहरा।

0: Listen to Sina Radio at work or at home, online at cinaradio.com. Sina Radio, anywhere, anytime.
1: दोस्तों आपको पता है कुमार सानू को सानू नाम कैसे मिला? मैं बताती हूँ, बंगाल में जब दूध में नींबू डालते हैं ना तो वो दूध फट जाता है और छाना बन जाता है, जिसे हम छेना भी बोलते हैं। बचपन में सब कुमार सानू जी को छाना छाना कह के बुलाते थे, बस वहीं से उन्हें नाम मिला छाना, जो बाद में हुआ शानू और फिर सानू। सुना रही हूँ जान तेरे नाम से ये गाना, म्यूजिक है नदीम श्रवण का।

चलो दूर चलते हैं इस दुनिया से कहीं, चलो दूर चलते हैं इस दुनिया से कहीं, जहां तुम हो और मैं हूं और कोई कहीं नहीं, जहां सिर्फ तुम्हारी महक हो फूलों की नहीं, जहां देखूं तुम्हारी आंखों से अपनी नहीं, जहां नूर हो तेरे चेहरे का चांद का नहीं, जहां मौसम हो प्यार का तकरार का नहीं, जहां हवाएं हो तेरी जुल्फों की मिट्टी की नहीं, चलो दूर चलते हैं इस दुनिया से कहीं, चलो दूर चलते हैं इस दुनिया से कहीं। अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म पाकीज़ा से, बोल है कैफी आसमी के, संगीत है गुलाम मोहम्मद का और गायिका है नन अदर देन लता मंगेशकर।

0: Thank you for choosing Sina Radio, 1650 on your AM dial.
1: 1650, Sina Radio.
2: 1650, सोच रही थी एक आशिक के लिए खुशनुमा मौसम क्या होता है, बस उसके प्यार का आना। एक आशिक के लिए बहार का क्या मतलब होता है, बस उसके प्यार का आना। एक आशिक के लिए खुशियों का मतलब क्या होता है, बस उसके प्यार का आना। यही कुछ जज्बात राजेंद्र कुमार भी बयानात कर रहे हैं फिल्म आप आए बहार आई के इस गीत में। उन्हें आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 Extension 1।
1: दोस्तों 2001 में फिल्म आई थी दिल चाहता है। फरहान अख्तर ने ये मूवी लिखी थी और ओरिजिनली उन्होंने अक्षय खन्ना को आकाश, ऋतिक रोशन को सिद्धार्थ और सैफ अली खान को समीर का रोल प्ले करने के हिसाब से ये मूवी लिखी थी, लेकिन ऋतिक रोशन ने मना कर दिया और उनके मना करने के बाद रोल गया अभिषेक बच्चन के पास, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर फाइनली जब आमिर ने फिल्म के लिए हाँ किया तो फरहान ने तुरंत अक्षय और आमिर के रोल्स एक्सचेंज कर दिए। आमिर बन गए आकाश और अक्षय सिद्धार्थ। सुनिए ये कमाल का डांस नंबर फिल्म दिल चाहता है से, जिसकी कोरियोग्राफी की फराह खान ने। सिंगर्स हैं शान और कविता कृष्णमूर्ति, म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का, बोल है फरहान के पप्पा जावेद अख्तर साहब के।

0: feels good.
1: Fly on Air India's new fleet to Delhi and enjoy world-class cabins, gourmet meals and warm hospitality. New feels good on Air India. TNC apply.
2: 1615 The GTA. This is Sina Radio.
3: 1650 Sina Radio.
4: राजेश खन्ना टीना मुनीम स्टारर 50-50 से अब आप अगला गाना सुनेंगे. म्यूजिक कंपोजर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सिंगर्स हैं आशा भोसले और किशोर कुमार. मैं 50-50 नहीं कह रही हूँ, मेरी तरफ से 100% श्योर है कि मैं आपको ये गाना सुनाऊंगी ही. वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह, वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह, आएगा तब हमें मुलाकात का मजा. मेरी तरह रहेंगे बेचैन ये नजारे, मेरी तरह रहेंगे बेचैन ये नजारे, आए ना आप जो मिलने तो होगा इन्हें गिला. आप मेरे हम सफर हो, आप हो मेरा सहारा, आप मेरे हम सफर हो, आप हो मेरा सहारा, पल भर की भी जुदाई मुझको नहीं गवारा. आप ही हो मेरी मंजिल, आप ही मेरा पता, आप ही हो मेरी मंजिल, आप ही मेरा पता, वादा करो मिलोगे कल फिर इसी जगह. इसी के साथ दिस इज कंगना मेहरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम सीना रेडियो. बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लिसनिंग टू सीना रेडियो.

0: broadcasting to the South Asian community of the GTA. This is Sina Radio. Sina Radio, 1650. Sina Radio News. आप हमें सिर्फ 5 मिनट दें, हम आपको सारी दुनिया की खबरें देंगे।
1: ये सीना रेडियो है। आज शुक्रवार जुमतुल मुबारक है, सितंबर की 11 और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की प्रार्थना और रबीउल अव्वल की 29 तारीख। इस वक्त हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 7 बजे हैं। ब्रेकफास्ट न्यूज के साथ खुर्शीद अकरम का अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। अमेरिका पर 9/11 के टेररिस्ट अटैक की आज मनाई जा रही है 25वीं बरसी। कनाडा अमेरिका का 51st स्टेट कभी नहीं बनेगा, न्यूयॉर्क में बोले पियर पॉलियव। और जीटीए में आई गैस प्राइसेस में कमी का, मोटरिस्ट आज उठा रहे हैं फायदा, मगर ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। लीजिए अब आप पूरे समाचार सुनिए। अमेरिका पर 9/11 के टेररिस्ट अटैक की आज 25th एनिवर्सरी है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया था और इसके बाद वॉर ऑन टेरर का लंबा दौर चला। इस टेरर अटैक में मौत का शिकार हुए 3,000 से ज्यादा लोगों को आज न्यूयॉर्क सिटी के मेमोरियल सर्विस में श्रद्धांजलि दी जा रही है। यमन के हूती मिलिटेंट्स ने रेड सी के स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी मोखा पर कब्जा कर लिया है और ताजा अपडेट्स के मुताबिक होतीज बाबल मंदब स्ट्रेट पर भी कंट्रोल हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। याद रहे कि बाबल मंदब वो समुद्री वाटरवे है जो एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड रूट का दक्षिणी दरवाजा है। फेडरल कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलियव ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा है कि कनाडा कभी भी यूएस का 51st स्टेट नहीं बनेगा। फॉक्स न्यूज पर एक इंटरव्यू में पियर पॉलियव ने ये जताने की कोशिश की कि कनाडा अमेरिका का एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं। ये पूछे जाने पर कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिकन्स के बारे में कैनेडियंस अब क्या महसूस करते हैं, तो मिस्टर पॉलियव का जवाब था, कैनेडियंस को ट्रंप के रुख से चोट पहुंची है। उधर प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने बताया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशंस में आई कड़वाहट के बावजूद उन्होंने

0: फर्नीचर भी शामिल हैं। याद रहे कि डकफोर्ड सरकार ने टैरिफ इम्पैक्टेड बिजनेसेस के वास्ते $1 बिलियन के इमीडिएट रिलीफ पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत टैरिफ प्रभावित बिजनेसेस और कंपनियों को पे रोल्स, लीज पेमेंट्स, यूटिलिटीज और दूसरे ऑपरेटिंग कॉस्ट में मदद मुहैया करवाई जा रही है। ब्रिक्स देशों के हेड ऑफ स्टेट की नई दिल्ली में कल से शुरू हो रही कॉन्फ्रेंस को लेकर भारत एक डिप्लोमेटिक हॉटस्पॉट बन गया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजिश्कियान समेत कई राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में हो रही है। ब्रिक्स के 11 मेंबर देशों में ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, यूएई और इंडिया शामिल हैं। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स तारिक फजल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद एक नए गवर्नेंस मॉडल को अख्तियार करने जा रहा है। मीडिया से रूबरू हुए तारिक फजल चौधरी ने ऐलान किया कि नए सूबों के कयाम के बारे में अक्टूबर में बहस कराई जाएगी। मजीद बरआं मिस्टर चौधरी ने कहा कि नए सूबों के कयाम पर बहस का असल मुकाम पार्लियामेंट ही है। वाज़ह रहे कि इसके कबल पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि सूबों के मामले पर बहस बिजनेस फोरम के बजाय पार्लियामेंट में हो। इस्माइली शिया कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर और इमाम प्रिंस रहीम आगा खान इन दिनों इंडिया के दौरे पर हैं। भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन की दावत पर हिज हाइनेस 9 से 15 सितंबर के बीच इंडिया विजिट पर हैं, जहां उनकी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई। प्रिंस रहीम आगा खान ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। और जीटीए के मोटरिस्ट गैस प्राइसेस में 8 सेंट्स पर लीटर की आई कमी का आज फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। बीती आधी रात के बाद गैस प्राइसेस में आई ये कमी ज्यादा देर बाकी नहीं रहेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीटीए में गैस प्राइसेस में कल के बाद फिर से उछाल आने वाला है। और अब मौसम। टोरंटो और आसपास के इलाकों में आज नीले आकाश के साथ हाई 22। आज सनराइज 6:52 पर हुआ, जबकि सनसेट 7:36 पर होगा। और इसी के साथ सीना रेडियो से समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सीना रेडियो न्यूज आप 8 बजे फिर सुनेंगे और हेडलाइन न्यूज 7:30।

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन जीटीए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Meet the world famous astrologer Pandit Nanda ji for palm reading, face reading and future predictions. With the guidance and powerful prayers, you can find solutions to any kind of problem and 100% removal of negative energies. Call today Pandit Nanda ji 647-822-9607 212 Queen Street East, Brampton 647-822-9607।
3: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सिन्हा रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सिन्हा रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सिन्हा रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।
4: जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी मैंने, आगे सारा आसमां अभी बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार। बहुत कुछ पाने का, बहुत कुछ करने का मन करता है ना कभी कभी, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम है जी। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे जो है हमारे हाथ में, और इन 24 घंटों को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं डिपेंड भी हम पर ही करते हैं। तो चलिए, जब शुरुआत अच्छी हो तो अंजाम अच्छा ही होता है, इसलिए आज हम अच्छी से शुरुआत करते हैं सिन्हा रेडियो 1650 AM पर मेरे यानी कि प्रीति के साथ विद दिस ट्रैक। एंजॉय करें।

0: मैं निकला ओ गड्डी लेके।
1: गड्डी तां तुसी भी लेके निकलोगे, ओ भी शेवरले दी। गेटवे शेवरले दी खास क्लीयरेंस ऑन 2026 दे नवे मॉडल ते डेमो गड्डियां च आ गई है। पिकअप ट्रकां ते एसयूवी उत्ते 0% इंटरेस्ट ते सिना रेडियो दा नाम लाओ ते 4 ऑयल चेंज फ्री पाओ। हर बजट हर परिवार दे लई गेटवे शेवरले 2 गेटवे बुलेवार्ड ब्रैम्पटन 9057917111।
2: खुशियां दे छोटे बड़े जश्न मनाओ केसर स्वीट्स तो डाइन इन टेक आउट ते लाइव केटरिंग करवाओ।
3: नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड ते ताजियां स्वादलियां मठियाईयां लई केसर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट अपनियां दो लोकेशन तो सेवावां प्रदान करदा है। केसर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन
2: 51 माउंटेनिश रोड एंड 10886 हॉरन टेरियो रोड ब्रैम्पटन। अजी कॉल करो 9054977722।
3: केसर स्वीट्स ते जैन फूड स्पेशल ऑर्डर ते अवेलेबल है।
4: अपने बिजनेस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है लेकिन एडवर्टाइजिंग बजट कम है, तो सिना रेडियो का वीकेंड ओनली एडवर्टाइजिंग पैकेज आपके लिए है। अब बहुत ही कम बजट में बिजनेस की एडवर्टाइजिंग कराइए। डिटेल्स के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1, दैट इज 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।
5: ये मोहब्बत भी बड़ी अजीब सी शय है। अब देखिए ना, मुट्ठी में भर ली तो अपनी, बिखेर दी तो दूसरों की, और अगर छुपा ली तो किसी की भी नहीं, है ना अजीब। नहीं, यहीं पे वाक्य खत्म नहीं होता है, आगे सुने जरा। मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, खफा हूँ जिनसे, जहन में मन में फिर भी बस उनके ही ख्यालों।

0: नाउ सीना रेडियो हेडलाइन न्यूज।
1: ये सीना रेडियो है और हेडलाइन समाचारों के अपडेट्स के साथ मैं हूं खुर्शीद अकरम। मिसिसागा में कोटनी पार्क ड्राइव के नजदीक एक कोलिजन के चलते हाईवे 410 साउथ बाउंड की एक राइट लेन और राइट शोल्डर बंद है। मिडिल ईस्ट से मिलने वाली खबरों के मुताबिक यमन के हूती मिलिटेंट्स ने रेड सी के इंटायर कोस्ट लाइन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। उधर खबर है कि हूतीज के खिलाफ डायरेक्ट किसी कार्रवाई से अमेरिका ने इनकार कर दिया है, हालांकि सऊदी अरब ने इसकी डोनाल्ड ट्रंप से अपील की थी। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने बताया है कि कैनेडियन मिलिट्री के लड़ने की ताकत को अपग्रेड करने के लिए उसे मिलियंस ऑफ ड्रोन्स की जरूरत है। ब्रिक्स देशों के हेड्स ऑफ स्टेट की नई दिल्ली में कल से शुरू हो रही कॉन्फ्रेंस को लेकर भारत एक डिप्लोमेटिक हॉटस्पॉट बन गया है। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद एक नए गवर्नेंस मॉडल को अख्तियार करने जा रहा है। ऑन्टेरियो साइंस सेंटर के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत इसके समूचे साइंस डिपार्टमेंट को ही ले ऑफ दे दी गई है। और जीटीए में गैस प्राइसेस में बीती रात से 8 सेंट्स पर लीटर की कमी ज्यादा देर के लिए नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गैसोलीन की कीमतों में कल से फिर बड़ा उछाल आने के आसार हैं। तो ये थे अभी तक के सीना रेडियो मुख्य समाचार। हमारे पूरे समाचार 8 बजे सुनना ना भूलें।
0: Headline news was brought to you by Sina Radio. News in detail will be broadcast on Top of the Hour.
2: क्रिमिनल ला कार एक्सीडेंट अते इमीग्रेशन केसेस ली इको ही ना मन्ने परमन्ने मशहूर अते धड़लेदार वकील ब्रिजमोहन ऑफ ब्रिजमोहन एंड एसोसिएट
3: 416-994-8989 ब्रिजमोहन.com
2: वकील ब्रिजमोहन ऑफ ब्रिजमोहन एंड एसोसिएट।
4: बहुत से शायरों ने अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी डेफिनेशंस रखी हैं हमारे सामने हर मुद्दे पर, चाहे वो जिंदगी हो, मौत हो या फिर मोहब्बत। ख्वाब झूठे किसी को दिखाया नहीं करते, एक बार जब किसी को कह दो अपना दामन फिर उनसे छुड़ाया नहीं करते। उसके इंतजार से भला क्या होगा हासिल, आने का कहकर भी जो आया नहीं करते। रखते हो जो दर्द भरा दिल अपने सीने में, दूसरों का दिल फिर वो दुखाया नहीं करते। दो कदम साथ चलकर जो जुदा हो जाएं, ऐसे लोगों को हम सफर बनाया नहीं करते। किस तरह गुजरती होगी जिंदगी उनकी, जरा सोच के देखें, पहली मोहब्बत को दिल से भुलाया नहीं करते।

0: गणेश चतुर्थी पराग फूड्स लेकर आए हैं मोदक का एक शाही दरबार। शुद्ध और मलाईदार खोया मेवा मोदक, केसर की खुशबू से महकता शाही केसर मेवा मोदक। पराग फूड्स मोदक, बप्पा के पसंदीदा मोदक।
1: होलसेल प्राइस पे मिठाइयां लीजिए पराग स्वीट्स से। 27 स्ट्रेथन एवेन्यू यूनिट 8 ब्रम्पटन।
2: 9054992880।

0: Broadcasting to the South Asian community of the GTA. This is Sina Radio. Sina Radio 1650. Sina Radio News. आप हमें सिर्फ 5 मिनट दें, हम आपको सारी दुनिया की खबरें देंगे।
1: ये सीना रेडियो है। आज शुक्रवार जुमतुल मुबारक है, सितंबर की 11 और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की प्रथमा और रबीउल अव्वल की 29 तारीख। इस वक्त हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 8 बजे हैं। प्राइम टाइम न्यूज के साथ खुर्शीद अकरम का अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज 9/11 की बरसी पर कनाडा यूएस के मजबूत रिश्तों को भी किया जा रहा है याद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों की पलट दी है बिसात। कैनेडियन मिलिट्री को मिलियंस ऑफ ड्रोन्स की जरूरत है, बोले प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। और रेड सी के पूरे कोस्ट लाइन पर कब्जा करने का हूतीज ने किया है दावा। लीजिए अब आप पूरे समाचार सुनिए। सबसे पहले ट्रैफिक अलर्ट। मिसिसागा में कोटनी पार्क ड्राइव के नजदीक एक कोलिजन के चलते हाईवे 410 साउथ बाउंड की एक राइट लेन और राइट शोल्डर बंद हैं। उधर सारनिया में फर्स्ट स्कूल रोड के नजदीक एक कोलिजन के कारण हाईवे 402 वेस्ट बाउंड की लेफ्ट लेन बंद बताई गई है। अमेरिका पर 9/11 के टेररिस्ट अटैक की आज 25th एनिवर्सरी है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया था और इसके बाद वॉर ऑन टेरर का लंबा दौर चला। इस टेरर अटैक में मौत का शिकार हुए 3,000 से ज्यादा अमेरिकन्स को आज न्यूयॉर्क सिटी के मेमोरियल सर्विस में श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज 9/11 की एनिवर्सरी हमें कनाडा और अमेरिका के बीच मजबूत दोस्ती और पावरफुल बॉन्ड की भी याद दिलाती है। जब दोनों देशों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस मुश्किल घड़ी का मुकाबला किया था। ब्रैम्पटन के 4 फायर फाइटर्स भी न्यूयॉर्क सिटी के रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए थे। कैनेडियंस आज उन लम्हों को याद कर रहे हैं, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों की बिसात ही पलट दी है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने बताया है कि कैनेडियन मिलिट्री के लड़ने की ताकत को अपग्रेड करने के लिए उसे मिलियंस ऑफ ड्रोन्स की जरूरत है। टोरंटो स्टार के ऑटवा ब्यूरो चीफ एलेक्स बेलिंगाल ने बताया है कि कैनेडियन मिलिट्री के एक अहम सेक्शन को इसी हफ्ते ऑफिशियली रीस्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है ताकि वो किसी बड़ी जंग में मेन फाइटिंग फोर्स बन सके। मिडिल ईस्ट से मिलने वाली खबरों के मुताबिक यमन के हूती मिलिटेंट्स

0: और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान समेत कई राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली में हैं। ये कॉन्फ्रेंस 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में हो रही है। ब्रिक्स के 11 मेंबर देशों में ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, यूएई और इंडिया शामिल हैं। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स तारिक फजल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद एक नए गवर्नेंस मॉडल को अख्तियार करने जा रहा है। मीडिया से रूबरू हुए तारिक फजल चौधरी ने ऐलान किया कि नए सूबों के कयाम के बारे में अक्टूबर में बहस करवाई जाएगी। ऑन्टेरियो साइंस सेंटर के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत इसके समूचे साइंस डिपार्टमेंट को ही ले ऑफ दे दी गई है। टोरंटो के वाटर फ्रंट की नई साइट पर ऑन्टेरियो साइंस सेंटर की नई बिल्डिंग में साइंस डिपार्टमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के 30 एम्प्लॉयज को ले ऑफ दी गई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ के चलते टोरंटो एरिया की लगभग 250,000 जॉब्स को खतरा पैदा हो गया है, जिसमें ज्यादातर जॉब्स डेयरी सेक्टर की बताई गई हैं। यह रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के टैरिफ ट्रैकिंग टूल ने जारी की है। जीटीए में गैस प्राइसेस में बीती रात से 8 सेंट्स पर लीटर की कमी ज्यादा देर के लिए नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गैसोलीन की कीमतों में कल से फिर बड़ा उछाल आ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वॉर के चलते क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। आज गैस प्राइसेस इसलिए अचानक घट गईं क्योंकि रिफाइनरीज ने गैसोलीन के विंटर ब्लेंड की ओर स्विच किया है। और अब कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेट से कैनेडियन डॉलर 72 सेंट यूएस, इंडियन रुपए 69, पाकिस्तान 204, बांग्लादेश 87 टाका, नेपाल 105, गोल्ड प्राइस इन कनाडा 6006 कैनेडियन डॉलर पर आउंस, क्रूड ऑयल 100 यूएस डॉलर पर बैरल। और अब मौसम। टोरंटो और आसपास के इलाकों में आज ज्यादातर धूप और नीले आकाश के साथ हाई खुशगवार 22 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ सीना रेडियो से समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सीना रेडियो न्यूज 9 बजे आप फिर सुनेंगे और हेडलाइन न्यूज 8:30 बजे।
2: Busy school days वापस आ गए हैं और चलो डेज आर हियर टू मेक मील टाइम easier. नेक्स्ट वीक के लिए कुकिंग essentials और अपने फेवरेट जूस को स्टॉक अप करें, ऑल एट लो prices एट चलो फ्रेश को. दिस वीक गेट आशीर्वाद होल व्हीट फ्लावर 9.07 किलोग्राम सिर्फ 12.99 में, बरार्स मलाई पनीर 375 ग्राम सिर्फ 4.49 और चलो जूस 1 लीटर जस्ट $2 में, एंड और भी बहुत कुछ. चलो फ्रेश को, वैरायटी वैल्यू वाह. सी फ्लायर फॉर डिटेल्स.
3: New feels good.
4: हाँ नया है.
3: New feels good.
5: Fly on Air India's new fleet to Delhi and enjoy world-class cabins, gourmet meals and warm hospitality. New feels good on Air India. TNC apply.
6: कर्जों से छुटकारा ये है जीत, ये क्रेडिट का नारा.
7: पिछले 18 सालों में जीटीओ क्रेडिट की मदद से 20,000 से ज्यादा फैमिलीज ने बिना बैंकरप्सी के अपने कर्जों से छुटकारा पाया है. चाहे बिजनेस के कर्जे हो या पर्सनल या सीआरए के टैक्सेस, मेक वन स्मॉल मंथली पेमेंट फॉर ऑल योर डेट्स.
8: कॉल रेखा ओबेरॉय एट 416-650-5800, 416-650-5800 या विजिट gtacredit.com.
9: हम मानते नहीं, ढूंढते नहीं, पर हम में से हर एक में लीड करने की, इंस्पायर करने की क्षमता है. चले जिसे भी आप अपना आइडल मानते हैं, वैसे मैं अपनी बात करूँ ना तो आई विश आई कुड बी अ बिट लाइक डॉक्टर किरण बेदी, द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया. मन चाहता है वैसा बनना, पर कहीं ना कहीं डर भी लगता है. फिर सोचती हूँ कि वो किसी और प्लैनेट से थोड़ी ना आई है, हम में से तो एक है. जब इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी के बारे में स्ट्रांगली सोचती हूँ, तब उठता है मेरी तरफ से एक छोटा सा कदम. अभी बातें और भी बहुत सी होंगी जी, पर पहले एंजॉय करते हैं ये अगला म्यूजिकल ट्रैक. सिना रेडियो 16:50 AM पर प्रीति के साथ.
10: ए, क्या बोलती तू,

0: क्या अच्छा रिकॉर्ड होके भी आप ऑटो होम इंश्योरेंस के प्रीमियम से परेशान हैं?
1: आपके पास अगर जी लाइसेंस है, कनाडा में मिनिमम 3 साल का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है और आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो ऑल स्टेट इंश्योरेंस के स्वप्निल खोसे से आज ही कांटेक्ट कीजिए 416-824-2737 पर।
0: स्वप्निल जी आपको सबसे लोएस्ट प्राइस, बढ़िया कवरेज और अच्छी एडवाइस भी देंगे, आपके ऑटो, सेकंड कार और होम इंश्योरेंस के ढेर सारे डॉलर्स बचाएं।
1: कॉल स्वप्निल खोसे 416-824-2737 416-824-2737
0: One day, every family faces a goodbye they wish would never come. In those difficult moments, love, memories and dignity matters the most. At Lotus Funeral and Cremation Center, we help families honor their loved ones with compassion, respect and care. Pre-planning today can protect your family from emotional and financial stress tomorrow. Give your loved ones peace of mind and lasting gift of love. Call Lotus Funeral and Cremation Center today. 647-547-8188. That's 647-547-8188.

अच्छा, कभी कभी हमें अपना किया काम बहुत छोटा सा लगता है, इनसिग्निफिकेंट सा लगता है। हम सोचते हैं कि हमारा ये छोटा सा स्टेप कैसे बदल सकता है सब कुछ। पर याद रखें कि हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम के साथ ही होती है। सो बिगिन विद वन स्मॉल स्टेप एंड डोंट लेट अदर्स स्टैंड इन योर वे। अपना रास्ता खुद बनाए। हाँ, एक बात और याद रखें कि हर कोई आपका साथ नहीं देगा। कुछ लोग हंसेंगे भी आप पर, बट सो वॉट। जहाँ कुछ लोग आपका मजाक बनाएंगे, वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंडली आपको फॉलो भी करेंगे। सो डोंट एवर गिव अप।

0: क्या GTA में आपका लोकल बिजनेस है? आजकल कस्टमर्स आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन क्या आपका बिजनेस आसानी से नजर आता है? अडैप्ट वेब स्टूडियोज आपकी वेबसाइट बनाते हैं, मैनेज करते हैं, गूगल लिस्टिंग और रिव्यूज को भी संभालते हैं। प्लान सिर्फ $250 पर मंथ, वेबसाइट के साथ $300 पर मंथ। आज ही अडैप्ट वेब स्टूडियोज सर्च करें या कॉल करें 6475319594 6475319594।
1: खुशियां दे छोटे बड़े जश्न मनाओ केसर स्वीट्स तो डाइनिंग टेकआउट ते लाइव केटरिंग करवाओ
2: नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड ते ताजियां स्वादलियां मठियाईयां ले केसर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट अपनियां दो लोकेशन तो सेवावां प्रदान करदा है केसर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन
1: 51 माउंटेनिश रोड एंड 10886 हॉरेंटेरियो रोड ब्रंटन अजी कॉल करो 9054977722
2: केसर स्वीट्स ते जैन फूड स्पेशल ऑर्डर ते अवेलेबल है
3: Sara inside love

0: नाउ सीना रेडियो हेडलाइन न्यूज।
1: ये सीना रेडियो है और हेडलाइन समाचारों के अपडेट्स के साथ मैं हूं खुर्शीद अकरम। बर्लिंगटन में बर्लोक ड्राइव के नजदीक एक स्टॉल्ड व्हीकल के चलते क्यूईडब्ल्यू फोर्ट एरी बाउंड की राइट लेन और राइट शोल्डर बंद हैं। उधर सारनिया में फर्स्ट स्कूल रोड के नजदीक एक कोलिजन के कारण हाईवे 402 वेस्ट बाउंड की लेफ्ट लेन बंद बताई गई है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने बताया है कि कैनेडियन मिलिट्री के लड़ने की ताकत को अपग्रेड करने के लिए उसे मिलियंस ऑफ ड्रोन्स की जरूरत है। उधर फेडरल कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलियव ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा है कि कनाडा कभी भी यूएस का 51st स्टेट नहीं बनेगा। मिडिल ईस्ट से मिलने वाली खबरों के मुताबिक यमन के हूती मिलिटेंट्स ने रेड सी के एंटायर कोस्ट लाइन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। भारत में हो रही ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ अहम बैठक की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उनका मोहसिन नकवी से बैकडोर चैनल्स पर राबेता रहता है, मगर तफसीलात मीडिया पर नहीं बता सकते। डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ के कारण टोरंटो एरिया की लगभग 250,000 जॉब्स को खतरा पैदा हो गया है। और जीटीए में गैस प्राइसेस में बीती रात से 8 सेंट पर लीटर की कमी ज्यादा देर तक जारी नहीं रहेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गैसोलीन की कीमतों में कल से फिर बड़ा उछाल आ सकता है। तो ये थे अभी तक के सीना रेडियो मुख्य समाचार। हमारे पूरे समाचार 9 बजे सुनना न भूलें।
0: Headline news was brought to you by Sina Video. News in detail will be broadcast on Top of the Hour.
2: जन्म कुंडली पर अमर्श, मुहूर्त की जानकारी, कुंडली में विद्यमान ग्रह दोष की शांति,
3: विपरीत महादशा, अंतरदशा के उपायों के लिए, जीवन के या संतान संबंधी समस्याएं,
2: डिप्रेशन या एडिक्शन की समस्या के लिए कॉल और टेक्स्ट क्लासिफाइड ट्रेंड वैदिक ज्योतिष पंडित ब्रिज मोहन शर्मा एट 416-456-9422
3: दैट इज 416-456-9422।
4: बिजनेस इनकॉर्पोरेट करवाएं सिर्फ $60 में और साथ में लें फ्री 30-मिनट कंसल्टेशन विद एन एक्सपीरियंस सीपीए मनोज शर्मा। हम आपकी सिचुएशन रिव्यू करके बताएंगे कि आपके लिए इनकॉर्पोरेशन सही है या नहीं। यह लिमिटेड टाइम ऑफर है 4372675315 4372675315।
5: New feels good. Feels good.
6: Fly on Air India's new fleet to Delhi and enjoy world-class cabins, gourmet meals and warm hospitality. New feels good on Air India. TNC apply.
7: इस फेस्टिवल सीजन ले जाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर सीना रेडियो के साथ। त्योहारों के इस खास मौके पर अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाइए सीना रेडियो पर और पहुंचिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक। अपने ब्रांड को दीजिए नई पहचान, नई रीच और नई ग्रोथ। सीना रेडियो, एंटरटेनमेंट भी, प्रमोशन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1। दैट्स 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।
8: मैं नहीं जानती कि आपका रास्ता कौन सा है, मंजिल कहाँ है आपकी। मैं खुद को आपकी जगह पर रख भी नहीं सकती। मैं आपको जज भी नहीं करना चाहती, सिर्फ ये उम्मीद रखती हूँ कि आप इस बात को दिल से कबूल लें कि आप बेहद खूबसूरत हैं, यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। क्योंकि जिस दिन से हमने खुद को आईने में गौर से देखा, उस दिन से कोई अपने सिवा अच्छा नहीं लगता।

0: 905-602-0884।
1: ये नंबर तो 401 डिक्सी किया का है।
0: बिल्कुल सही पकड़े हैं, 401 डिक्सी किया का ही तो नंबर है जो आजकल सबके स्पीड डायल पर है, क्योंकि एट 401 डिक्सी किया गेट फ्री विंटर टायर्स विद वन सीजन स्टोरेज और $1,000 डिस्काउंट, 0% इंटरेस्ट रेट प्लस $500 क्रेडिट ऑन स्पोर्टेज आइस विद लॉयल्टी, अ $6,000 क्रेडिट एंड 1.99% इंटरेस्ट ऑन नीरो ईवी विद लॉयल्टी, अ $500 क्रेडिट ऑन स्पोर्टेज एंड सोरेंटो हाइब्रिड। कॉल सनी गिल 905-602-0884, दैट्स 905-602-0884।

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन जीटीए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने बिजनेस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है लेकिन एडवर्टाइजिंग बजट कम है, तो सुना रेडियो का वीकेंड ओनली एडवर्टाइजिंग पैकेज आपके लिए है। अब बहुत ही कम बजट में बिजनेस की एडवर्टाइजिंग कराइए। डिटेल्स के लिए आज ही कॉल करें 416-777-1650 एक्सटेंशन 1, दैट इज 416-777-1650 एक्सटेंशन 1।
3: अच्छा, आप अक्सर सोचते होंगे कि जब गुड बाय हो गई ना मेरी तरफ से तो बस बात वहीं खत्म, हम कहाँ याद करते होंगे भी आपको। पर एक बात बताऊं, ये भूल आपकी है। असल में बात यूं है कि जब भी आप याद आते हो तो कुछ भी याद नहीं रहता, और आपकी याद में खोकर हम बताना भी भूल जाते हैं कि आप अक्सर याद आते रहते हो। सुना रेडियो 1650 पर आप हैं प्रीति के साथ।

बात करने जा रही हूँ एक सफर की, बीते हुए दिनों की, फीलिंग्स की। हर वक्त हर पल तेरी याद मेरे साथ रही, हर लम्हा मैंने तुझे अपने दिल के सबसे करीब पाया है। तेरे साथ गुजारे हर पल आज भी जब आंखों के सामने आते हैं तो जिंदगी फिर से खिलखिला उठती है, मैं फिर से जी उठती हूँ। तुझे फिर से अपने साथ पाती हूँ, फिर से महसूस होता है कि जिंदगी में कोई गम नहीं। फिर से वापस लौट जाती हूँ उस जगह जहाँ तेरे साथ हसीं पल गुजारे, हंसे खेले और जिंदगी के मायने समझे, कुछ सपने देखे, कुछ वादे किए, इतना हंसे कि गम भूल गए और इतना रोए कि मजबूत बन गए। पर अभी बात खत्म कहाँ हुई है, पहले ये म्यूजिकल ब्रेक एंड देन द जर्नी कंटिन्यूज।

0: गणेश चतुर्थी पराग फूड्स लेकर आए हैं मोदक का एक शाही दरबार। शुद्ध और मलाईदार खोया मेवा मोदक, केसर की खुशबू से महकता शाही केसर मेवा मोदक। पराग फूड्स मोदक, बप्पा के पसंदीदा मोदक।
1: होलसेल प्राइस पे मिठाइयां लीजिए पराग स्वीट से, 27 स्ट्रेथन एवेन्यू यूनिट 8 ब्रम्पटन,
2: 9054992880।
3: Coming up, Sina Radio News. Give us 5 minutes and we'll give you the world.
4: Sina Radio 1650.
5: Jin khoobsurat lamhon ke bare mein sochti hoon, jinhein yaad karti hoon, wo pal sukhi ret ki tarah haath se phisal jata hai. Sachchai tez dhoop ki tarah aankhon mein chup jati hai. Chhod jati hai khali haath aur aankhon mein nami. Wahi yaadein और एक वादा, वादा की ये यादें हिस्सा है मेरा, नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर कभी।

0: broadcasting to the South Asian community of the GTA. This is Sina Radio. Sina Radio, 1650. Sina Radio News. आप हमें सिर्फ 5 मिनट दें, हम आपको सारी दुनिया की खबरें दें।
1: सीना रेडियो समाचार, मैं हूं खुर्शीद अकरम। न्यूज एट 9 में आपका स्वागत। सबसे पहले मुख्य समाचार। किसी बड़ी जंग में लड़ने के लिए कैनेडियन मिलिट्री को किया जा रहा है तैयार, उसे मिलियंस ऑफ ड्रोन्स की है जरूरत, बोले प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। अमेरिका यात्रा के दौरान पियर पॉलियव ने मीडिया के सामने रखा कनाडा का मुकदमा, और 9/11 की आज बरसी पर कनाडा यूएस पुरानी दोस्ती के हवालों को भी किया जा रहा है याद। लीजिए अब आप पूरे समाचार सुनिए। सबसे पहले ट्रैफिक अलर्ट। बर्लिंगटन में प्लेन्स रोड के नजदीक एक कोलिजन के कारण हाईवे 403 हैमिल्टन ईस्ट बाउंड की 2 लेफ्ट लेन्स और राइट शोल्डर बंद हैं। उधर मिल्टन ओंटेरियो में जेम्स स्नो पार्कवे के नजदीक एक कोलिजन के चलते 401 ईस्ट बाउंड की 1 राइट लेन और 1 राइट शोल्डर बंद हैं। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने बताया है कि कैनेडियन मिलिट्री के लड़ने की ताकत को अपग्रेड करने के लिए उसे मिलियंस ऑफ ड्रोन्स की जरूरत है। टोरंटो स्टार के ऑटवा ब्यूरो चीफ एलेक्स बेलिंगाल ने बताया है कि कैनेडियन मिलिट्री के एक अहम सेक्शन को इसी हफ्ते ऑफिशियली रीस्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है ताकि वो किसी बड़ी जंग में मेन फाइटिंग फोर्स बन सके। उधर फेडरल कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलियव आज अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में 9/11 टेरर अटैक के विक्टिम्स की मेमोरियल सर्विस में शिरकत की। मिस्टर पॉलियव अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कनाडा यूएस की पुरानी दोस्ती का हवाला भी देते नजर आए, साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भी अपने विचार रखे। फॉक्स न्यूज समेत कई अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स पर बोलते हुए पियर पॉलियव ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ लड़ाई में तमाम कैनेडियंस यूनाइटेड और एकजुट हैं। कंजर्वेटिव लीडर पॉलियव ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान यह भी कहा कि कनाडा कभी भी यूएस का 51st स्टेट नहीं बनेगा। अमेरिका पर 9/11 के टेररिस्ट अटैक की आज 25th एनिवर्सरी है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया था, और इसके बाद वॉर ऑन टेरर का लंबा दौर चला। इस टेरर अटैक में मौत का शिकार हुए 3,000 से ज्यादा अमेरिकन्स को आज न्यूयॉर्क सिटी के मेमोरियल सर्विस में श्रद्धांजलि दी गई है। आज 9/11 की एनिवर्सरी हमें कनाडा और अमेरिका के बीच मजबूत दोस्ती और पावरफुल बॉन्ड की भी याद दिलाती है, जब दोनों देशों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस मुश्किल घड़ी का मुकाबला किया था। ब्रैम्पटन के 4 फायर फाइटर्स भी न्यूयॉर्क सिटी के रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। कैनेडियंस आज उन लम्हों को याद कर रहे हैं, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों की बिसात ही पलट दी है। मिडिल ईस्ट से मिलने वाली खबरों के मुताबिक यमन के हूती मिलिटेंट्स ने रेड सी के एंटायर कोस्ट लाइन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। उधर खबर है कि हूतीज के खिलाफ डायरेक्ट किसी कार्रवाई से अमेरिका ने इनकार किया है, हालांकि सऊदी अरब ने इसकी डोनाल्ड ट्रंप से अपील की थी। अमेरिकन न्यूज वेबसाइट एक्सियोस न्यूज का दावा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस ने बीती रात प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करके हूतीज को रोकने के लिए उनसे मदद मांगी थी, जिससे ट्रंप ने इनकार कर दिया। याद रहे कि हूतीज ने स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम यमन के पोर्ट सिटी मोखा पर कब्जा कर लिया है, और वो जल्द बबल मंदब वाटरवेज तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। भारत में हो रही ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस